0: एजेंसी ने सरहद एक कामयाब ऑपरेशन का माफ कीजिएगा, तुर्की की कौमी इंटेलिजेंस तंजीम ने सरहद एक और कामयाब टारगेटिंग ऑपरेशन किया है। गजा भर में होने वाले इसराइली फौजी हमलों में जंगबंदी के माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इसराइल अपने ज़ेर कब्ज़ा मशरक़ी अलकुदस में खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए हैं और गजा पट्टी में जारी जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों में एक फ़लस्तीनी खातून हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं।
1: अब खबरें तफसील के साथ।
0: तुर्की की कौमी खुफिया एजेंसी ने सरहद पार एक और कामयाब ऑपरेशन किया है। हताई के ज़िला रेहानली में 2013 में होने वाले दहशतगर्दाना हमले जिसमें 53 शहरी हलाक हुए थे, उसके अहम मुलजिमान में से एक उमर अल खतीब को एजेंसी ने उस वक्त गिरफ्तार करके तुर्की में मुंतकिल कर दिया जब वो समंदरी रास्ते से यूरोप फरार होने की कोशिश कर रहा था। सुर्ख वारंट के तहत मतलूब और शाम में असद हुकूमत के अस्करी इंटेलिजेंस यूनिट्स के साथ बराह रास्त रबते में रहने वाले उमर अल खतीब के बारे में ये बात सामने आई है कि उसने रेहानली हमले की मनसूबाबंदी, जासूसी की सरगर्मी और बम की फराहमी में कलीदी किरदार अदा किया था। हमले के बाद असद हुकूमत की जानब से नकद इनाम पाने वाला ये दहशतगर्द तवील अरसे से एजेंसी की कड़ी निगरानी में था। इस हमले के दीगर मुलजिमान में से यूसुफ नाजिक को 2018, चंगेज सैरतेल को 2024, जबकि मोहम्मद दीप कुराली और तैमूर दुकानजी को 2025 में किए गए ऑपरेशंस के दौरान गिरफ्तार किया गया था। रिहानली हमले का हुक्म देने वाले मेजर जनरल कफा मुलहिम को फरवरी 2024 में बशार उल असद की जानब से नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो का सरबराह मुकर्रर किया गया था। मालूम हुआ है कि कफा मुलहिम असद हुकूमत के खात्मे के बाद बैरून मुल्क फरार हो चुका है। गजा भर में होने वाले इसराइली फौजी हमलों में जंगबंदी के माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों में एक सहाफ़ी समेत कम अज़ कम 8 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 15 से जायद जख्मी हो गए हैं, जिसकी तस्दीक हस्पताल के हुकाम ने की है। गजा शहर में अलशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तिब्बी ज़राए के मुताबिक तलल हवा मोहल्ले में एक गाड़ी को निशाना बनाया कर किए गए इसराइली फ़जाई हमले में 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक और कई जख्मी हुए। अशिफा अस्पताल के करीबी इलाके में एक रिहायशी इमारत पर एक अलग इसराइली फ़जाई हमले में एक फ़लस्तीनी खातून जहाँ बहक हो गई है। जुनूबी गजा में खान यूनुस के शुमाल में वाक़ अलमवासी इलाके में अलौकाफ मस्जिद के करीब शहरियों के एक इज्तिमा पर इसराइली ड्रोन हमले के नतीजे में फ़िलिस्तीनी सहाफ़ी मोहम्मद अब्दुल अजीज़ अल नजार दीगर हलाकतों के साथ जहाँ बहक हो गए। नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स ने अल नजार की मौत की तस्दीक करते हुए बताया कि दीगर जख्मी अफराद ज़ेर इलाज हैं। अल नजार होली कुरान रेडियो के लिए बतौर ब्रॉडकास्टर काम करते थे और अब

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: सामिन, रूस यूक्रेन जंग में मैदान जंग और मुज़ाकरात की मेज दोनों जगहों पर तनाव मुसलसल बढ़ रहा है। रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन भारी फौजी नुकसान और इकतसादी दबाव के बावजूद यूक्रेन में फौजी कार्रवाई से पीछे हटने का कोई इशारा नहीं दे रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि वह फौजी फतह हासिल करने के अपने यकीन पर कायम हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही रूसी मीडिया यह पेशगोई कर रहा है कि यूक्रेन के पास फिजाई दिफाई मिजाइलों की कमी का फायदा उठाते हुए हमलों की शिद्दत में इजाफा किया जाएगा। दूसरी तरफ माहिरीन का कहना है कि मास्को का बुनियादी हदफ यूक्रेन को एक काबिल अमल रियासत के तौर पर बरकरार न रहने देना है और इन हालात में अमन बहुत दूर दिखाई देता है। दूसरी जानब यूरोप और रूस के दरमियान मखलूत जंग के इल्जाम भी संगीन होते जा रहे हैं। मगरबी हुकाम मास्को पर साइबर हमलों और फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि रूसी वजीर खारजा सर्गी लावरोफ ने बरतानिया और यूरोप की तरफ से यूक्रेन को मिजाइलों की फराहमी पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। क्रेमलिन का मुतालबा है कि मगरब की जानब से कीव को दी जाने वाली माली और फौजी इमदाद फौरी तौर पर बंद कर दी जाए। दुबई से तेल अवीव जाने वाली दुबई की एक परवाज को उस वक्त सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी जब उसके पायलटों के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़े के बाद तैयारे के अगवा के मुमकिन खतरे का अलर्ट जारी हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाई दुबई की परवाज में सवार मुसाफिर और अमले ने इस जद्दोजहद के बाद तैयारे को

0: सामिन, चिपकने वाली चीज़ें जो एक अहम ज़िंदगी बचाने वाले हैं जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, इनकी एक तवील तारीख है। साइंसी तहकीक से ये बात सामने आई है कि बहुत से मुख्तलिफ कुदरती मवाद से तैयार करदा चिपकने वाली चीज़ें इंसानी तहजीब में तकरीबन 6000 साल से मौजूद हैं। चिपकने वाली चीज़ें जो टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ रोज़ बरोज़ तैयार हो रही हैं, अब मस्नूई मवाद से तैयार की जाती हैं। आज इस्तेमाल होने वाले सुपर ग्लू की तारीख सिर्फ 80 साल पुरानी है। सामिन, साल था 1942। दूसरी जंग अजीम अपने तमाम तर तशद्दुद के साथ जा रही थी, खासतौर पर यूरोपी बरेआज़म और बहरुल काहिल में। उस वक्त अमरीका में तकरीबन तमाम कारखाने फौजी सनत पर मरकूज थे और पूरी तनदही से अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए फौजी मवाद तैयार कर रहे थे। कीमियादान हैरी वेज़ली कूवर, जो इन कंपनियों में से एक में काम करता था, उनका सिर्फ एक ही मकसद था, मैदान जंग में फौजियों को वाज़े नज़ारा फराहम करने के लिए आसानी से ले जाने वाली प्लास्टिक की दूरबीन तैयार करना था। उसके काम के नतीजे में एक ऐसी मसनूअत तैयार की गई जिसने उनको कभी भी तवक्को नहीं हुई, लेकिन जिससे उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, और वो थी सुपर ग्लू। हैरी वेज़ली कूवर ने एक नया कीमियाई मवाद बनाया जिसे बाद में उन्होंने अपनी तहकीक के दौरान साइनो एक्रिलेट का नाम दिया। उन्होंने इस मवाद से दूरबीन और नज़ारे बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह मवाद बहुत चिपचिपा और जल्द खुश्क हो जाता था। कूवर जो बहुत परेशान और गुस्से में थे कि उनकी तहकीक से वो नतायज बरामद नहीं हुए जो वो चाहते थे, इस चिपचिपा मवाद को एक तरफ उन्होंने फेंक दिया और 10 साल तक इसके बारे में भूल गए। यहाँ तक कि उन्होंने जेट से चलने वाले लड़ाका तैयारों के पायलट डिपार्टमेंट में नई नौकरी भी शुरू कर दी। कूवर को एक पायदार किस्म की प्लास्टिक की जरूरत थी ताकि कनोपी नामी कोट, जो जेट लड़ाका तैयारों के पायलट सेक्शन का अहाता करता है, हवाई जहाज के जिस्म पर मजबूती से चिपक जाए और हवा से मुतासर ना हो। उन्होंने अपने पुराने काम के बारे में सोचा। 10 साल से अपने दफ्तर में काबीना के शेल्फ पर उसकी किस्मत का इंतजार कर रहे थे। बदकिस्मती से यह मादा, जो हवा में नमी की वजह से उसके रबते में आने वाली हर चीज से चिपक जाता है, इस काम के लिए मौजूद नहीं था। लेकिन कूवर ने इतफाक से महसूस किया कि उसने जो नया मादा तैयार किया है उसे मजबूती के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बार उसे एक तरफ फेंकने के बजाय चिपकने वाली अमरीकी मोजत ने अपने तैयार करदा सुपर ग्लू को 1956 में पेटेंट करवाया और उसे 1958 में ईस्टमैन 910 के नाम से मार्केट में लाया गया। लेकिन जब यह नाम सार्फिन की तवज्जो हासिल ना कर सका तो उन्होंने नाम बदलकर सुपर ग्लू कर दिया और उसकी फरोख्त मुल्क में अचानक धमाका बन गई। इसकी हादसाती ईजाद अमरीकी मौजूद हैरी वेज़ली कूवर के लिए खुशकिस्मती ना बना, क्योंकि जब सुपर ग्लू दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ तो कूवर का पेटेंट ख़त्म हो चुका था, इसलिए उसे कई कंपनियां मुख्तलिफ नामों से तैयार करने लगी। मिसाल के तौर पर तुर्की में प्लास्टिक, शीशा, सेरामिक धात, लकड़ी, चमड़े या रबड़ की किसी भी चीज़ को इन सुपर चिपकने वाली चीज़ों से जोड़ना मुमकिन था, जो कि जापानी ग्लू के नाम से मशहूर हैं, हालांकि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यही वजह है कि आज चिपकने वाली अशिया को पूरी दुनिया में बहुत से मुख्तलिफ शोबों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: अहम इजादात।